0: तो बात तो मत
1: ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है
2: बहुत वाह क्या कहें
0: बहुत तो बात
1: शम्स।